0: नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में।
1: For Sound of Music produced and hosted by Jasper Saad on the station that serves your community 1240 AM and 95.9 FM WGBB.

0: It's also a beautiful song by Rafi Saab, combination, female singer, but check his voice out, my God. Check this piece out. Let me hit you with this one here.
1: दिल हथेली पर ले आए तुमने बुगारा
0: और ग्रीटिंग्स टू महानी जैकरन हु जस्ट लॉग ऑन टू दिस प्रोग्राम एंड शी आल्सो लाइक दिस काइंड ऑफ म्यूजिक इन ऑल रिफ बर्बीज आल्सो महानी शी हैज आल्सो गुड मेमोरीज दिस काइंड ऑफ सॉन्ग इन हर डेज हम चले आए ओह Stay tuned for Dr. Taurus and give us an update in Guyana and the tragedy and some other politics coming up soon.

0: वो देखो मुसरूच कर मेरी जान जा रही है।
1: Fingers of Shankar Jackie Shankar takes the lead. Oh, what a great combination.

0: Well, let me play something a little appropriate for him now, if you can. Almost.
1: अब महफिल को थोड़ा सा बदल दे, डांस करना है. ओके, सो अब वो गाना जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी एवर सिंस दिस कॉन्सर्ट वाज अनाउंस्ड, प्रेम रतन धन पायो. और स्पेशली यहाँ पर जितने भी लड़कियां हैं, आप अपनी अपनी जगह पर डांस कर सकते हैं मेरे साथ.
0: ऑफ कोर्स विद द वॉइस ऑफ सलमान खान, सनम कपूर, पुलम चहल एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द क्रू अलाइव. Concert recording. Can you get it better than that?

जाऊंगा मैं तुझे शाम सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरी आवाज में न लूंगा यस आई विल लव यू फ्रॉम दस्त दान येट नेवर अगेन विल आई इवन कॉल